خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد

हिते जिन सुधारनि जी ॻाल्हि थी रही आहे उहे करणा पवंदा। मुस्तफ़ा कमाल चयो तव्हांजी बहितरी ऐं भलाई वधीक सुभाउ लाज़मी आहिनि, कावड़ ऐं ड्रामेबाज़ी सां कुझु बि न थींदो। बलोचिस्तान ऐं KPK में जंग हली रही आहे, हीउ निज़ाम गद्दार पैदा करे रहियो आहे, उन करे उन निज़ाम खे तब्दील करणो पवंदो। सुबुह खां ॿ सूरत में क़बूल न आहे, सिंध हिकु हुई हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु ई रहंदी। ज़ुल्फ़िकार जूनियर सिमण में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जे सिंध जे विरहाङे जी कंहिं बि कोशिश खे सिंध जा माण्हू क़बूल न कंदा। वफ़ाक सिंध जो पाणी चोरी करण खां लाइ जलालपुर केनाल समेत ॿिया वाहन जा मनसूबा ठाहिण चाहे थो। सिंध में HIV एड्स सगीन मसलो बणिजी वियो आहे। सिंध असांजी धरती आहे, उन जो फ़ैसिलो करण जो इजाज़त सिर्फ़ु सिंध जी आवाम खे आहे। सिंध विरहाइण वारे कंहिं बि साज़िश जी सख़्तु मुखालिफ़त कंदा रहंदासीं। मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरे जी उमरकोट में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि। मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरे चयो त असेंबली में वॾियूं तकरीरूं कंदड़ खे चवां थो त पहिरियां यूनियन काउंसिल ॾांहुं ॾिसनि। फार्म 47 ज़रियनि असेंबलियुनि में अचण वारे अमल खे असां कंहिं बि सूरत में क़बूलु नथा कयूं। कराची पुलिस जा कुझु कलाकनि दौरान मुबैना मुक़ाबला टंडोआरी ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया नूकतर वेझो मुक़ाबले चार डोआरी ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार। बिलाल गज़नफर मोहम्मद सलमान ऐं शाहरुख खे ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार कयो वियो। मलीर में शाह लतीफ़ टाउन पुलिस पारां फुर मज़ामत ऐं शहरी खे क़तलु कंदड़ जवाबदार खे साथी समेत ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि डोहारी शाह लतीफ़ जे सेक्टर C में मौजूदु हुआ। फायरिंग जी ॾे वटि बाद अब्दुल लतीफ़ वलद अल वधायो ऐं अजब अली खे गिरफ़्तार करे वरितो। शाह लतीफ़ टाउन थाणे जी हद में हिकु ॿी मुबैना मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियल फोरू मारिजी वियो। पुलिस अनवर अबासी होटल वेझो मुक़ाबले बाद फोरू अदनान वलद गुल मोहम्मद खे ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार कयो। क़ौम FBR जे बदनवान आफ़िसरनि खे पाले रही आहे। हुकूमत पंहिंजे नाक़िस हुकुमरानी लिकाइण लाइ आवाम ते बार विझी थी। जमायत इस्लामी जे सरबराह हाफ़िज़ नईमुरहमान जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि। हाफ़िज़ नईमुरहमान चयो त आवाम जे पैसनि सां रुगो कुझु माण्हुनि जो पेट भरियो पियो वञे। IPPs खे उन बिजली जा पैसा ॾिना वञनि था जेका ठहे ई नथी। शहबाज़ हुकूमत 4,000 अरब खां वधीक लेवी वसूलु करे चुकी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सऊदीया तुर्किया ऐं मिस्र जे परॾे वज़ीरनि सां टेलीफोनिक राब्तो। परॾे तर्जुमान मूजिबि सऊदी परॾे वज़ीर फैसल बिन फरहान ऐं तुर्क परॾे वज़ीर हकान फिदान जे मका मुआहिदे कमेटी जे इजलास बाबति ॻाल्हि ॿोल्हि। पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर। मिस्री परॾे वज़ीर सां ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त नामे ते अमल दरामद ते ज़ोर। बतरफ़ी सरकार इलाइक़ाई आलमी सलामती ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर। अगवाणी वेझो हाउं ॼाणींदड़ हासो ठुल खां रावंड वेंदड़ तबलीगी जमायत जे कोच कल्टी थियण सबबि 8 ॼणा फौत, 20 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया। डेरा सरकी थाणे जे हद में सुपर स्टार वटि हादसो तेज़ रफ़्तारी सबबि पेश आयो। हादसे में बैदल मुगेरी, नूर मोहम्मद पौड़, हामिद पौड़, मोहम्मद अमीन सरकी, फैज़ मोहम्मद बुड़ो, गुलाम सरवर मुगेरी फौत थी विया ऐं दिलमुराद हज़ूर बख्श पौड़, शेर मोहम्मद पौड़ ऐं इब्राहिम पौड़ समेत ॿिया ज़ख़्मी थी पिया। फौतियुनि जा मड़े ज़ख़्मियुनि ते गवाणी अस्पताल मुंतकिल कया विया। सखर में कोसाए जतोई बिरादरी में हलंदड़ खूनी तकरार जो निबेरो, धुरियुनि जा 6 खून ऐं 16 ज़ख़्मी थिया। बि मजमू तौर 1,85,00,000 रुपया ॾंड मुक़ररु जतोई धुर ते कोसा धुर जे 5 खूननि ऐं औरत समेत 6 ज़ख़्मियुनि जो ॾंड 1,70,00,000 मुक़ररु। कोसा धुर ते जतोई धुर जे 1 खून ऐं 12 ॼणनि जे ज़ख़्मियुनि जो 54,00,000 ॾंड मुक़ररु।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो अदन ए जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: इत्तेफाक कयो वयो पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारती बयान के रद्द करे छड़ियो पर रे ऑफिस मौजूद एक तरफ का तकरारी कदम जम्मू कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सकूं ही मामलो गरियल कौमन जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिस्सो आहे भारत कश्मीरी अवाम के हक देण जो वायदो पूरा करे सेप्टेम्बर ए मई वारन जंगन में पाक फिजाया के शाहीन आला करदार अदा कर वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सदर आसिफ अली जरदारी जो फिजाया के दिहाड़े ते पैगाम सदर आसिफ अली जरदारी हकवारी जंग में साबित हो तो दुश्मन केडो भी ताकतवर हो असा के अजम के शिकस्त नथो डेई सके वजीर आजम शहबाज शरीफ तो पाक फिजाया के शाहीन पैंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पान मंजराई है सेप्टेम्बर ए मई वारी जंग में दुश्मन के शिकस्त डनी थरपारकर के सूफी बुजुर्ग हरदास भगत जो गादी नशीन भगत माथुराम ध्यांत करे वयो सोग में शहर के समूरन बाजारन समेत कारोबार मरकज बंद रहो माथुराम जो आखिरी रस्मों अज ही अदा कई वेंद हिंगोर जा भरसा कौमी शाहरा ते ऑयल टैंकर जो कार के टक्कर बजणा फौत हादसे में जावेद अली शाह समेत बजणा फौत लाश अस्पताल मुंतकिल भिरिया रोड में कराची खां लाहौर वींदड़ तेजगाम एक्सप्रेस जे टक्कर में नौजवान फौत फौती नौजवान जी सुजाणप भिरिया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक थी
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसी लिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मुआजजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजीव नदल तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं की समंदर जादू की बारिश तलासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावत। जी हाँ जनाब प्रोग्राम खैर कोई नया सा प्रोग्राम नहीं है भाई, आप लोग जानते हैं जबकि आप लोगों को पता है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम सुन रहे हैं। तो जनाब आप लोगों को मजीद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस प्रोग्राम में मालूम पड़ने वाली है, चाहे अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं या फिर नहीं रखते, क्योंकि नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा करने की बहुत ज्यादा काम आएंगे। वैसे भी कहते हैं कि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ही एक अच्छी सी बात होती है, तो खूबसूरती का ख्याल रखना किस तरह से होता है, किस तरह खूबसूरती की जो ना वो केयर की जाती है और खूबसूरती को हमेशा के लिए किस तरह जो है ना वो महफूज किया जा सकता है, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ढेरों ढेर बातें होने वाली है। तो रेडी शेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए और हमारे साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करने के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है खूबसूरती की दुनिया में आपको कहा जाता है वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जरा बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे थे? बिल्कुल जी उम्मीदन शदीदन के ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ होगा जी प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक, यानी कि पूरे दो घंटे हम यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। और आप यकीन माने कि इन दो घंटों में आप लोगों के साथ हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले ये तो भाई आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं तो प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, सॉन्ग्स होंगे और आप लोगों से पूछे जाएंगे सवाल, आप लोगों के लिए सेगमेंट्स होंगे प्रोग्राम में और आप लोगों के लिए बहुत सारी खूबसूरती की बातें भी होने वाली है। ओके जी, तो कुल मिलाकर रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ देने के लिए और फुल ऑन एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 और के संभाले करना काम करती भैया सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 और की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ, तो बहुत प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के ना स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से किस तरह की और कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी, कौन से प्रोडक्ट क्यों आप इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरह आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने का काम करने वाले हैं। ओके जी, सो रेडी शेडी हो जाइए और आइए सुनते हैं ये एक प्यारी सी नाज, सो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नाच जो कि हम सब ने सुनी और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोग्राम है जनाब, हम मौजूद रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली खूबसूरती के हिसाब से बातें की जाएंगी, देखा जाए तो जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो उनको तरीकेकार बताने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक बता दिया जाए तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आज से आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताने वाले हैं कि वैसे तो इस प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होंगी, तो आज मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि आप लोगों से पूछे कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत अलग अलग तरीकेकार होते हैं, अलग अलग सी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि वो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पता उनको खूबसूरती मिले या ना मिले। लेकिन आप जरा मुझे ये बताएं कि आपको आप ना अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ज्यादा एक मुश्किल सा काम लगता है कुछ लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओके जी, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात होगी तो वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर आज के प्रोग्राम में बात होने वाली। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें होंगी। लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होने वाले, तो अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपने नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को बता पाए जनाब कि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी ज्यादा जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने ज्यादा वाले फायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीज तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या प्रोडक्ट है, कैसे लगाना है, क्यों इसके फायदे हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों को बताते चले। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल एड ये जाते हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि फलां प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप जल्दी में गोरे हो जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट लगाएं ये जल्दी में गोरा कर देता है। तो जो जल्दी में गोरा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके अंदर हेवी से केमिकल डाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात ये है जनाब, ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है, फुल जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो है ना इसकी जो मेकिंग है, इसका जो प्रोसेस है वो इतना जबरदस्त रखा गया है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने सारे हमें लोग सुन रहे हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, ऑयली स्किन है, ड्राई है, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के तरीकेकार क्या होने वाले हैं, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या फिर आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते ना कहते हैं हम क्रीमें नहीं लगा पाते, चले कोई बात नहीं, आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसके बारे में तो क्या ही बात बताऊं, यानी कि डी स्किन का जो फेस वॉश तैयार किया गया है तो वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का, इसका जो है ना वो थीम रखा गया है या इसकी जो क्वालिटी रखी गई है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप नाम लेकर तलब करने वाले हैं। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स में चले जाते हैं, वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं आपको मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको नंबर्स भी बताए जाएंगे और नंबर्स जो बताए जाएंगे उनके ऊपर आपको रब्ता करना पड़ेगा और रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो नंबर से जनाब नोट कीजिएगा, बिल्कुल जी, पहला नंबर है 03-12-50-25-907
और दूसरा नंबर है 0332738439099। अच्छा, ये नंबर से जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सकते हैं, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं मिल रहे, और जल्दी से हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताएं आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपके कॉमेंट्स हैं जिनकी जानब हम आएंगे, आपके साथ गुफ्तगु होगी, बातें होंगी, चिटचैट होंगी, मजे करेंगे। अच्छा, तो कॉमेंट्स वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अब चल रहा है। ओके जी, सो प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं बरकत रमादानी जमाली बलोच, हमें सुन रहे हैं जी बलोचिस्तान से, आपको वेलकम कहा जाता है। रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अखलाक बलोच हमारे साथ हैं, अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, आपका इंतजार कर रहे थे, जाय बुधा। और सलीम गोपांग हमारे साथ कहते हैं नूर हुसैन जमाली, गंदा खान बलोच से बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूजर्स आ चुके हैं महफिल में और आपको वेलकम कहा जाता है। और हाफिज मोहम्मद बाबर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। और राजा रमीज हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहते आपका नाम क्या है, मेरा नाम सिद्रा मुस्कान है। और उसके अलावा फरवा गुल हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके अच्छे नसीब करे, आमीन जी सुमा आमीन। और नजीर कोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान को वेलकम कहा जाता है। और भाईजान लिखते हैं कि अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं, और खालिक की इज्जत करने वाले, खालिक का अदब करने वाले, खालिक के अमल का एहतराम करते हैं, और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है। अच्छा जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ हम ये बहुत ही प्यारे सा गाना भी सुनेंगे, आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ सदराबाद ही करती जा रही हैं, तो गाने भी सुनेंगे और आपको बताएंगे। प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कौन सा प्रोडक्ट लगाया, कब लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और रिजल्ट्स कैसे पा चुके हैं।

मोहम्मद राशिद अवान हमें सुन रहे थे। सलाम सिस्टर सिद्रा, काफी दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सलाम, जी वाले को बस सलाम कहते हैं। जीशान अली बोजारा में सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम। फरवा कुल के थी सिस्टर, आप कैसी हैं? जो आपका नाइस है, गुड वॉइस, ओके थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो भाई, गोट रईस गुल हसन खोसो से वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम असलाम कहते हैं। शो तमाम जबरदस्त आए, थैंक यू तमाम भाई जो मोहब्बत हुआ है। अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के हम अपने हुसन की केयर करते हैं। क्या बात है। वैसे मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, यानी कि खूबसूरत होना, खूबसूरत रहना हर किसी को पसंद आता है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको खूबसूरत दिखना अच्छा नहीं लगता होगा। हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। खूबसूरती का ख्याल रखना ये बहुत ही एक अच्छी सी आदत होती है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है। और उसके अलावा कासिम खान हमें सुन रहे हैं, सरदार कासिम खान मीरानी, ओके शाह जमाल सी हमारे साथ है मेरे ख्याल में, आपको वेलकम कहते हैं भाई जान। और चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं चाचा, तबीयत कैसी है आपकी?

उसको जरा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए। जनाब यहाँ पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है। डे स्किन ब्यूटी क्रीम जब आ चुकी है तो छा चुकी है। यहाँ पर इरम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। और टाइम भी हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप जरा हमारा इंतजार कीजिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे जी 1:40 पर। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूं। आप सुन रहे हैं Whitish and D-Skin Beauty Show, sponsored by Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products। इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल
2: लाया है NPS तीन की ताकत के तीनों अज्जा की यकसा मौजूद
3: थाश्मीजो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:00 3 मिनट ते सिर्फ GFM 88

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को क्यों ना बताएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही इतनी अच्छी और इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों को खूबसूरत बना देंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि आए हाय चस्सी करा दे. तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एक क्रीम है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई क्रीम. अगर आप भी कोई ऐसा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सेफ हो, आपकी खूबसूरती को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ आ सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए. वैसे भी आप लोगों को इस चीज के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से थोड़ा आपने अवॉइड करना होता है. वैसे भी जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट भरा पड़ा है भाई ऐसे प्रोडक्ट से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, जो कि आप लोगों के स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, आपकी खूबसूरती ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो आपकी जो खूबसूरती है ना वो तो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन उल्टा आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनका होना आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होता है. आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब सी हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो खराब हो चुकी होती है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और आपके पास कुछ अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मेकिंग की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको माइक्रोबीट्स फॉर्मुलेशन मिल रहा है और जनाब ये जनाब विटामिन ई बीट से भी तैयार की गई है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो कि आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर मिलने वाली है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना इतनी खूबसूरती मिलती है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खूबसूरती मिलना स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से. अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट दे रही है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से. क्या बात है भाईजान. बिल्कुल जी, अगर आप 2 रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिल रही है खूबसूरती वो भी हमेशा के लिए. ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो खूबसूरत होते रहेंगे जैसे और सारे प्रोडक्ट आपके साथ कर रहे होते हैं. अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो आपको खूबसूरती मिलती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी खूबसूरती भी कहीं आपसे रूठ ही जाती है. ऐसा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद होगा जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से होगा. अगर आप मार्केट जा रहे हैं आपको नहीं पता कि भाई हम कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं, हमारे एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि आप हमें अभी अभी सुनाया स्टार्ट कर चुके हैं, आपको नहीं मालूम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप ऐसा कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए. आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप परचेज कीजिए. अगर नहीं आपको मिल रहे, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे एरिया में नहीं मिलते, हमारे सिटी में नहीं मिलते, तो आपको मैं नंबर बता रही हूँ, उस नंबर के ऊपर आप राबता कीजिएगा. नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप राबता करते हैं तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहाँ मिल जाएगी. वैसे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालकात में भी मिल रही है. ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी अभी बनी है, नया नया प्रोडक्ट है, ये भाई इतनी जबरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट है और इतनी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है. और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी. आप इस्तेमाल करें और बाहर के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी देखा है गोरे कितने गोरे होते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम. अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भाईजान डायल कीजिए 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907. अगर ये नंबर बंद हो, नहीं रिसीव हो, तो आपके पास दूसरा नंबर भी है जो है 03-32-73-84-309 03-27-38
4309 ये बिल्कुल दोनों नंबर्स हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं. एक बंद होगा, एक नहीं उठाएगा, तो आप दूसरे के ऊपर ट्राई कीजिए. अगर दूसरा ना उठाए, दूसरा अगर बंद हो, तो आपको जो पहला बताया उसके ऊपर रब्ता कीजिए. एक ना एक तो खुला ही होगा, एक ही ना एक जो है ना उसके ऊपर आपको जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा. आपको बताया जाएगा कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, या फिर कहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं अवेलेबल तो वो वहाँ पर अवेलेबल करवा दें. बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहे हैं. और जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन बात. तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को. डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए. अच्छा, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं मेरी. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि भाई आपको लगता होगा कि अगर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो खूबसूरती मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो आप जरा अपनी बात कीजिए, आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं. और आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 881 पर और फेसबुक पर. तो फेसबुक पर आइए, कमेंट कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, सबको बताइए मार्केट में आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आ चुकी है और छा चुकी है.

मेरे को शेयर कर रही है यहाँ पर आपके कमेंट्स हैं और क्या क्या कह रही हैं आप। बिल्कुल जी, आपकी कमेंट्स की जाने बातें। और उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। हाँ जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। और खूबसूरती के मामले में हमेशा कहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।

ये स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या फिर नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे लगा के छोड़ेंगे. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी फजीला. फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत. आप बताएं आप कैसी हैं. ये सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को. और फिर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ गई. हां जी, देखें ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. और जी हमारे साथ ही हमारी दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी. आ गई आप? माशाल्लाह माशाल्लाह. हां जी आइए, आप ही का इंतजार था. मैं सोच रही थी पता नहीं चंदा आएगी कि नहीं. क्यों नहीं आएगी? चंदा की जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आ चुकी है तो चंदा को आना पड़ेगा. आप बताएं कब इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम? वैसे मीरपुर खास में तो मिल रही होंगी अगर तो. आप बताइए कब परचेज कर रही हैं? वैसे डी स्किन का फेस वॉश अगर पर्सनली बताऊं, भेण वाली सलाह का पाई ना तो डी स्किन जो फेस वॉश अनी डिस जाओ. जादू को ताम ना, जादू को ताम ना, जादू को ताम ना, जादू को ताम ना. ओके जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है. अलीजा को भी वेलकम कहते हैं. अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. उलेल इस्लाम अदर कहते अदा चाहला खुश सफा चाक सलेट कलम भाऊ असा भी चुप करी अमा जो शो सफर में बुधू था कराची वनी रहा आयू. अच्छा, चुप करे ना बुधो बाबा, थोड़ो थोड़ो गालायो, गालाइंदा रहो, छो तो हरकत में बरकत आ है. बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम कहते हैं. वफा मुमताज अली खोसो भाई हमें सुन रहे हैं. भाई जान खुशामदीद गोट रईस गुलशन खोसो खां तमास आंखे ज्वाइन कयो आ है. बुधायो तां जे गोठ में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन? मिले थी त भली गाल है, नथी मिले त पोई तमा के जेके नंबर बुधाया थी उन नंबर से रातो कयो आई पाजे गरीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वेठो. ठीक आ, अच्छा त ई खूबसूरत गानो बुधू था जेको तहां जे नाले हुंदो.

जी क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना सुन रहे हैं। खूबसूरत तो आप भी होने वाले हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ जनाब इसे जो है ना डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया। अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, तो जनाब एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी क्रीम जिसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, डॉक्टर्स का फार्मूला है। वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले जो ना थोड़ा सा घबराते हैं कि हम लगाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ये चीज होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। वैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपके चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तो चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। इस्तेमाल कीजिए और आपको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाजो प्रोडक्ट का।

0: रंगदार।
1: अच्छा फजीला, बात ये है ना कि भाई शादियों का सीजन चल रहा है तो आप बस समझ आइएगा। मैंने पहले बताया था ना कि मेरे खानदान में कुछ शादियां होने वाली हैं, तो बस वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही मतलब जिंदगी जो है ना वो सीधी सीधी जा रही थी, फिर हमारे माइट्रो ने शादियां कर ली। भाई शादी होती है ना, ब्याह आते हैं ना, मजो अच्छे। ये केड़ी जिंदगी आ, नचो खाओ पियो एंड स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो। अच्छा यहाँ पर फरवा कहती है कि आप ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से, और कहते हैं अच्छा जिला हैदराबाद से। ठीक है जी, आपका शो बहुत नाइस है, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथी ने स्मार्टू गोपांग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरे लाड़काना यूनिवर्सिटी से अच्छा जा रहा हूँ कम्बर, और आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, सॉन्ग की आपने फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगाएंगे। और अखलाक भाई कहते हैं जी जी, डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के बैठे हैं, क्या बात है जी।

पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ एसन अली बुक्टी मौजूद हैं जी, लाड़काना गोठ रोहल खान बुक्टी का तवां से जो प्रोग्राम बुध पया, थैंक यू सो मच मोहब्बत वाइन तवां जो। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते वेलकम बैक मैम आर जे, थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतें हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। अखलाक भाई कहते हैं सियारो अच्छी वयो बाबा, थोड़ू थोड़ू आयो आना, थोड़ू थोड़ू पंध में आ तरी ते चवान थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा छो तो खोड़ मानू जी या एकड़ी रूटीन हुंदी आ त जी सियारो इंदो आ है या सियारे में खोड़ मानू जे के ना पांजे चेहरे जी केयर करना है सफा घणी हु क्रीमू लगाइंदा है ने आई हु चवान है त भई कोई भलो प्रोडक्ट असा मठो जे जेको असा सियारे में लगाए सगो छो तो सियारो तकरीबन मुखे लगनो त सियारो जेको ना सीजन हुंदो आ है छाजो क्रीम्स यूज करण जो। अगर तुम भी सियारे जो इंतजार कर था या तुम भी सियारो अची वो है तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो पाया तो डी स्किन जो फेस वॉश उन लाजमी वो डी स्किन जो फेस वॉश है ना इन के बारे में तुम्हें थोड़ो बुधाई हलां तो डी स्किन जो फेस वॉश है सब का पैरी गाल डी स्किन फेस वॉश जो तैयार थियल है बाबा हाइलोरोनिक एसिड सीरम से इन जो फार्मूलो है ना वो एतरो जबरदस्त रखो वो है अगर तुम यूज कर पाया या तुम यूज करने की तैयारी में आयो तो जल्दी कर बाबा ये ढो सुठो मौको आनके हथ मान वो हाने वो पाने करीबी जनरल स्टोर से उतना मालूम वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश मिले तो को नालो वी कर तलब कजो छो तो कुछ वरी दुकानदार अड़ा हूं थोड़ा वो हूं मतलब थोड़ा चंदा टोपीबाज अगर तुम वो चो था दादा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश दे तो वही चवंदा उन्होंने न हों ना प्रोडक्ट तो चवंदा भाव तुम हि प्रोडक्ट खड़ी वो हि हले वो हि भलो अव हि हि कर छी वो कर छी उनके तुम लगाए असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम फेस वॉश ही खपे अगर तुम ना तो तुम पे दुकान से अवेलेबल कराए वो जी नंबर तक प्रोग्राम बुधाया थी वो नंबर तुम भा के दई चो चो सदा इन नंबर से राबो कर भा साहब के बुधायो तो तुम ही नंबर से राबो कर गोठ में तुम पे दुकान से अवेलेबल कराए सो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश छो तो तुम दुकान से भी अवेलेबल हूं तो तुम भी फायद पव समझो था जे भी दुकानदार भाई असा बुधन पाया वो नंबर से राबो कर पे दुकान से तुम अवेलेबल कराए सो था जे तक भी थोड़ा कूड़ न ालो दुकानदार भी ये कहना तो बाबा को प्रोडक्ट ना ही उन्होंने तो चाहता ग्राहक जो है खाली हथ न वे तो उन्होंने खाली हथ बेशक तुम नमोट आयो पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश हुजन लाजमी है सो बिल्कुल खोड़ गाल तुम्हारा साथ प्रोग्राम में पूरे पूरे टे बजे तीन होंद तो सात टे बजे तीन होंद पर तुम्हारा गुड हूं न ये तुम मुझे बुधा टॉपिक से भी ालो थोड़ो तुम्हें खूबसूरती जो ख्याल कि रखा इतने टाइम थो है जरा न्यूज ब्रेक वो था उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी तुम्हारी मोटी अचू था कारी नमन जो इतने वेठा हो जो ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: चौधरी चयो आहे त ड्राफ्ट सभिनी पार्टियुनि सां शेयर कयो वेंदो इत्तेफ़ाक राय खां पोइ ॿियो मरहलो शुरू थींदो रेफरेंडम जो ॿियो नालो अञा सूबे जे विरहाङे जी हिमायत न कंदासीं आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरहाङे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली मंज़ूरी सूबनि जे विरहाङे जे मुखालफ़त PTI जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राज चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरहाङे जी हिमायत न कंदासीं आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरहाङे लाइ लाॻापियल पाकिस्तान कश्मीर बाबति भारतीय बयान खे रद्द करे छॾियो आलमी बिरादरी खां नोटिस जो मुतालबो परॾेही ऑफिस मूजिबि हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम वलारियल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि ही मामलो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिसो आहे भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जा वाइदा पूरा करे मुतालबो परॾेही ऑफिस मूजिबि हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम वलारे कश्मीर जी हैसियत सेप्टेम्बर ऐं मई वारे जंगनि में पाक फ़ज़ाए जे शाहीन नारा किरदार अदा कयो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो फ़ज़ाए जे ॾियारे ते पैगाम सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फ़ज़ाए जे शाहीननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मञाई आहे सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त
2: दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले
1: लाहौर पुलिस PTI जी गिरफ्तार अगवान हमाद अजहर जी गिरफ्तारी जाहिर करे छॾी लाहौर पुलिस मूजिबि हमाद अजहर 18 केसनि में घुरबल आहे ऐं 3 सालनि खां रुको शो पुलिस हमाद अजहर खे

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खान जतोई ऐसा संगठन मौजूद आए और अबू जर जतोई और समीना जतोई शानजे जतोई अम्हा के बुधू पया अदी किया आयो असा असां के तव्हांजो खिलण वणंदो आहे. अच्छा, तव्हांखे खिलण वणंदो आहे. थैंक यू वेरी मच. पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा पोइ तव्हां सभिनीनि खे वणंदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसजो. ऐं अल्ताफ बलोच जागजानी हमारे साथ कहते हैं प्लीज प्ले शमन हाज़िर तव्हांखे ॿुधायूं था. ऐं डेडिकेट अज़रा खोसो बिस्मिल एंड मी. ओके थैंक यू. और कहते हैं दोबारा आपने अच्छा दूसरी फरमाइश अगर वो ना प्ले हो सके तो ये वाला लगा दीजिएगा. डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड मी. ओके थैंक यू. प्यारे चाचू को वेलकम कहते हैं. अच्छा कश्मीर से भाई आपने अखलाक भाई ने भी गाने की फरमाइश करी है. क्या बात है जी, गाना लगाते हैं आपका. ज्वेलरी का खालिक लाशारी है कहते शो तव्हांजो वी आई पी आहे. शमन जो गानो ॿुधराए जो अंदाज़ तुंहिंजा मूंखे वणी विया. मां ॾिसां थी इहो गानो अगरि मिली वियो त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधरायूं था बाबा. और ऐसे शो खालिद अली हमारे साथ है. खालिद आलम खान है. ओके जी, खालिद आलम खान मोहम्मद खान आप दोनों को वेलकम कहते हैं. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है. और जी समीउल्लाह हमें सुन रहे हैं. समीउल्लाह कहते हैं हाय. हम कह रहे हैं हेलो. मोहम्मद मीरन जगरानी भाई हमें सुन रहे हैं. जेकब आबाद

से भाई जान कैसे हैं, ठीक ठाक है। और हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम इतना बड़ा, हाँ जी आप भी गोरे हो जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो हिदायतुल्लाह लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और लुबी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम सिटू जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस यो, थैंक यू वेरी मच लुबना। और गुलाब खान, गुलाब गुल हमारे साथ हैं, गुलाब गुल कहते हैं सलाम है मोहब्बत बाजी, दादू सिंध से गुलाब गुल आपका शो सुन रहे हैं। और डॉक्टर कुर्बान अली कमरानी, गुड शो, नाइस होस्टिंग, थैंक यू वेरी मच, आप भाइयों को वेलकम कहते हैं। सुमाटू लिखते हैं कि आपके नाम से होनी चाहिए क्रीम, सिद्रा ब्यूटी क्रीम, इतनी जबरदस्त लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पोई तवांके खबर पड़जी वेंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾो फ़ाइदो आहे, ऐं तव्हांखे तॾहिं मिलंदो न जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा। ऐं मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो पिया त तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु कीअं रखंदा आहियो। वैसे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु त हर कंहिंखे रखणु घुरिजे, अगरि तव्हां मर्द आहियो, तव्हां ख़वातीन आहियो, हर कोई बाबा पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खां वधीक छा ई प्रोडक्ट आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी वाह वाह छा।

राजा सागर भाई कहते हैं गिफ्ट कयो ना एक त लगाए दिसू फेस वॉश भी। हाँ हाँ सब इतने मुफ्त जे मालते वेठा है पांजी वटो खबर पए व। वैसे एतरी महंगी कोने का मतलब थोड़ी कंजूसी कयो था कंजूसी न कयो बाबा पाने खूबसूरती सा केड़ा लेख।

ॾाढो भलो गानो जेको असां इंजॉय कयूं पिया. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. अच्छा, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी सारे दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता चले कि भाईजान मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम चल रही है. तो अब भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको मिल जाएंगे. अगर नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में वो जरा डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उनको बताइए कि हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश हो जाएगा तो भाई क्या ही बात हो जाएगी. तो दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते नाइस शो, ग्रेट होस्टिंग एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी क्रीम. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कोई शक नहीं इस प्रोडक्ट में. भाई पाण असां इस्तेमाल कंदा आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ऐं पर्सनली हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिंजो जीजू बि इस्तेमाल कंदो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एॾो वॾो फैन आहे. मां पुछांसि भई भाउ एॾा ई सफ़ा चिमको था, चए बाबा इहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां बि इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हां पाण बिल्कुलु इस्तेमाल कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, थोरो पाण ते ख़र्चो कंदा कयो, ॾाढी सुठी.

वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो ॿुधोसीं। हिकिड़ो ॿियो गानो असांजी लिस्ट में आहे, जी गानो हूंदो मंज़ूर सखराणी जी आवाज़। हिन गाने खे बि ॿुधंदासीं ऐं ॾाढो भलो गानो आहे। तव्हांखे यादि ॾियारे छॾींदुसि। सोचो त इंजॉय कयो। प्रोग्राम सुन रखे व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो।

आंसी ही गानों ने मानो जलाया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर पाया। अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पे तो बुदायो बाबा बुदायो शर्मायो छोटा। अच्छा ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कंपेयरिंग माशाल्लाह जीती रहे। और सिद्रा सॉन्ग सुनाए जिसमें तू न हो जाए एड़ी दिल काडे कंदासी। अच्छा ठीक है मारे साथी तवाजो गानो हली वियो तो बिल्कुल हलायो था। अल्ताफ अलोट जाग जानी चाचू लिखते हैं कि प्ले शमन हाजिर चाचू हलायो था थोड़ा सबर कयो। मकसूद मल्हा कहते हैं मैं तो ऐसा ही है बिल्कुल जी। अब आप चश्मा लगा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा।

ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਆ ਤੂੰ अगर ना भी सुना तो का गाल कोने का बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए वनो वठी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ए सोना थी वनो अच्छा समीरो चौहान हमें सुन रहे हैं मिठी से आप हमारा शो सुन रहे हैं ओके जी बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं हिदायतुल्लाह कहते हैं मैं आपको पता है इतने दिन से आपका शो क्यों नहीं अच्छा शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे सही है जी सिखो न पो कदी सिखंद हुआ की अच्छा सागर भाई कहते हैं इंशाल्लाह वठी अचबो जरूर यो ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह मजे में ता बुदायो कारे में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट हलंदा अच्छा अगर एकड़ी या भी गाल आए मैं हमेशा तवा सकंदी आ अगर तवा पाण कोई प्रोडक्ट नथा लगाए सको यानी कुछ मानन के सफा घणो स्किन जो प्रॉब्लम होंदो आए हु न कोई प्रोडक्ट लगाए सकंदा आ तो चलो अगर तवा नथा लगाए सको तो तवा ही जके प्यारा प्यारा प्रोडक्ट आ है डी स्किन ब्यूटी क्रीम थी वई डी स्किन फेस वॉश थी वयो इन के तवा के ही पांजे पिरी प्यारे के गिफ्ट भी दई सको था समझो दा अगर तवा पाण नथा लगाए सको तो तवा के गिफ्ट दई सडियो यो माना बराबर थी दो हिसाब ता लगाए या कोई लगाए तो तुम पान नथा लगाए सको तो तुम के प्यारे पीरिय के गिफ्ट करे छो वाह वाह थी वेंदी अच्छा गुलाब भा तुम जो मोहब्बत है तुम प्रोग्राम वाणी पयो थैंक यू अच्छा ये मुगल उमरानी भाई हमारे साथ हैं वेलकम कहते हैं भाई को चलिए यहाँ पर आप ये गाना एंजॉय कीजिए जरा और बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बिलाल अली हम यहाँ पर ले रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं सर यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा.
0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. उस करे स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपके गोट में नहीं मिल रही, आपके गाँव में नहीं मिल रही, आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिल रही, आपके सिटी में नहीं अवेलेबल, तो जल्दी से डायल कीजिए जनाब, जो नंबर अभी आपको बताने लगी हूँ, और नंबर के ऊपर रापता करेंगे तो फौरन ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और उन्हें भी पता चलेगा कि कहां कहां पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-273-4309-033-27-38-4309। बिल्कुल जी, यही नंबर से जो कि आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए।

क्या बातें, जिंदाबाद थई जवानी जिंदाबाद, बहुत ही प्यारा गाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पा जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी दर्दे दिल हमें ज्वाइन कर चुकी है और लिखती है कि चंदा चले इस बात को तो छोड़ ही दे, और कहती मेरी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि मैं अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बेतहाशा बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पसंद नहीं तो मैं उसके सामने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ। क्या ही बात है जी, बहुत बढ़िया, आपको वेलकम कहती स्वीटी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी मायरा, हमारा शो सुन रही है। मायरा वालेकुम अस्सलाम, क्या बातें, कहती है मैं भी बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाऊंगी। और आप बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा वाला सीन बन जाएगा ना, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना माइक्रोबीट्स हैं, वाइटामिन ई बीट्स हैं, और ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये जब इसके अंदर ऐड की गई है तो क्रीम की जो खूबसूरती है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी वाली खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल करवाने के बाद भी नहीं हासिल कर पाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपका टाइम भी बचाएगी, आपके पैसे भी बचाएगी, और आप घर बैठे मुकम्मल खूबसूरत हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छी वाली रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ट्राई करके देखिए, जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और जनाब उसके अलावा मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं वैसे सॉन्ग सुनकर कोकिला याद आ गई. वही तो मैंने पहले ही बोला था. फरवा गुला में सुन रही थी आप ही, आपका शो बड़ा सुपर डुपर जबरदस्त है. थैंक यू वेरी मच फरवा. और बिलाल कहते हैं कोई प्यारो पिरी कोने को छो भला कोने को ये सफा ये न क्यों बाबा.

महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ कहते हैं कुंज आप सॉन्ग भूल गई। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। चले अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपका गाना लगाएं कि नहीं तो मैं कल आने वाली हूँ ना तो कल आपका गाना सुनेंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। अच्छा फरवा आप हमें सुन रही हैं तो आपने जो गाना बोला था ना वो मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुना दूंगी। वैसे जो आपने फरमाइश करी थी वो इस तरह की थी, वो टोन उसका ऐसा था कि वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ही सुना जाए तो अच्छा था। ओके जी आप क्या करेंगे, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना उन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाता है और वो भी इस चीज को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि उनको अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, खूबसूरती के मामले में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, और खूबसूरती के मामले में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो क्या ही बात है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं जनाब, मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, हर किसी के स्किन के हिसाब से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जानते ही जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तो जान लें और पहचान लें कि इतना प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है तो फायदा उठाइए। Hey

जी ओ जी, बड़ा प्यारा गाना था जो हमने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि शायद बब्बर की आवाज में होने वाला है। इस गाने की भी किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दी थी, तो जरा हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी रमीज नहीं रमजान अली भाई। रमजान भाई कहते हैं कि दिल लगी ही, दिल लगी में दिल गया, मुझे दिल लगाने का नतीजा मिल गया, अरे मैं रोता हूँ मेरा दिल गया, तू क्यों मुस्कुरा रही है, तुझे क्या मिल गया। क्या बात है जी, क्या बात है। और फरवा की थी, आप ही ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरवा। अखलाक भाई कहते हैं मूव इट, शेर जो ऑप्शन ना है ये न क्यों बाबा, सबनी वट ऑप्शन आई, ये बहानेबाजी बंद करो। और रमजान भाई कहते हैं बहन इतने दिन कहाँ गुम थी आप, मैं तो यहीं पर थी। और ये चाचा खालिद कहते हैं अल्लाह हाफिज बेटा से डो टेक केयर। आप भी चाचा अपना ख्याल रखिए, वैसे आपने अपनी तबीयत के बारे में तो बताया नहीं। फिर कहते हैं कि भाईट्री वेगी भाईट्री मुझे तबीयत जो पूछे ही कौन थी। अच्छा रशीद खोसू भाई कहते हैं बहुत अच्छा बलोची सॉन्ग हाँ ना, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप सारे भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करके देखिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जितनी भी लोग हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। फजली कहती है ओए प्यारी लगता है पता नहीं अब क्या मसला है, कुछ तो है, लेकिन चलें फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है।

0: गुजरता जा रहा है, हमारे यहाँ पर मोकलानी का टाइम हो चुका है। इजाजत वठंदासी तमाम खां मुखलिस मोहम्मद हाशिम सुमरो से गट मौजूद आए आई तमाम सा के किथा का जॉइन कयो है तमाम सा गट आए शहजादो गुलफाम एंड शहजादा गुलमुनीर सुमरो टंडो मोहम्मद खान से बेहतरीन शो मोहतरमा आरजे साहिबा थैंक यू वेरी मच जी आप भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है जी मुनासिब सी कीमतों में, बस अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए वहां से मालूमात लीजिए मिल रही है तो बढ़िया नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही है उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा। भाई साहब का जीना हराम कीजिए जब तक आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करा देते, तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। और इसी के साथ साथ वरी तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो पांजो ओ हीरो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हो जे तो माजरत कयो था जेदा फीडबैक रहजी वया है ने जिनजा गाना रहजी वया है सबने का माजरत कयो था सो मोकलानी ना ही बाबू सिन सलामत साल सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर। ही करा देते तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
2: फॉर्म 47 की पैदावार है, अनफॉर्चुनेटली वो वफाद गुजरा बात कर रहे हैं, जो धानी की पैदावार है वो बैठ के तनकीदें कर रहे हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो 18वीं तरमीम पे बात कर रहे हैं। आप लोग पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके आप बात करो। आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के, आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के, आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
3: शाहजीन साहब मुझे मोशन पुट करने दे, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
4: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमीम ऐं सूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसिला न कंदा, पहिरीं ही अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जी लीना मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु बि न थींदो। वफ़ाक़ सिंध में 77 सालनि खां हिकु ॿिए मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसिर करे छॾियो, सुभाणे ॾे वापसीअ जा इम्कान। ज़रियनि जो चवणु आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी 2 ॾींहनि खां फ्रांस वञणो हो, हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुल्तवी करे सुभाणे लंडन खां ॾे वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अमेरिका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कतरी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान मजीद चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमेरिका ते भारण बदिरां स्ट्रेटिक मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ाई यकीनी बणाए सघिजे थी। पीटीआई अवाम जी मर्ज़ी बिना सूबनि जे विरांगे जी मुखालफ़त करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ी बिना सिंध जो विरांगो थियो त वफ़ाक कमज़ोर थींदो। सूबनि जे क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे, हीउ संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरांगे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली मंज़ूरी ॾींदी। पाकिस्तान कश्मीर बयान खे रद्द करे छॾियो, आलमी बिरादरी खां नोटिस जो मुतालबो। परॾेही आफ़िस मूजिबि हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम हलारियल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। हीउ मामिलो घरियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जा वाइदा पूरा करे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारे जंगनि में पाक फ़िज़ाए जे शाहिननि आला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फ़िज़ाए जे ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाक फ़िज़ाए जे शाहिननि पंहिंजे पेशावराणी सलाहियत महारत पाण मञराई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। لاہور پولیس پی ٹی آئی دے گرفتار حماد اظہر جی گرفتاری ظاہر کرے چلی لاہور پولیس موجب حماد اظہر ارنا کیسن میں گھربل آئے ٹن سالن کا روپو شو جانچ پولیس حماد اظہر کے گرفتار کیا ہے ہاں حماد کے ریمانڈ لائے عدالت میں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आइए
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाक फ़ज़ाया जे शाहीननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण विञाई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। लाहौर पुलिस पीटीआई जी गिरफ़्तारी, हमाद अज़हर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। लाहौर पुलिस मूजिबि हमाद अज़हर अरिड़हं केसनि में घुरबल आहे ऐं 3 साल। रूपो शो जांच पुलिस हमाद अज़हर खे गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे हमाद अज़हर खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में घोटकी जे फहमीदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी। फहमीदा खे बाज़ियाब न कराइण ते अदालत पारां DIG सखर मथां कावड़ जो इज़हार। अदालत IG सिंध खे ईंदड़ हफ़्ते तलब करे वरितो। अदालत चयो आहे तव्हां औरत खे बाज़ियाब न करायो, तव्हां छो आया आहियो? IG सिंध खे पेश थियणो हो। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन आॾो। मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेश। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो, तव्हांखे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो आहे? दोस्त जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मंगेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी हुई। ककड़ भरिसां कलोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े दौरान मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। नौजवान जाफ़र कलोई जे वारसनि लाश रखी धरणो आयो। नौजवान खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। एहतियात जारी रखण जो चिताव। सकरण वेझो ॻोठु रहमो किरियो में HIV जा वधीक 13 नवां केस ज़ाहिर। ॻोठु में HIV मरीज़नि जो अंगु वधी 33 थी वियो। ॻोठनि में HUP समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाण जो मुतासिर मरीज़नि जो इलाज न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जूं सहूलियतूं ऐं दवाऊं ॾियण जो मुतालबो। लाड़काणे जे एयरपोर्ट थाणे जी हद मां ॿ वापारी अॻवा, परड़े जी वासी नवाब अली सूमरो ऐं संदसि दोस्त PP अॻवाण दीदार अली ब्रहण गाॾी समेत अॻवा कयो वियो। अॻवा जे इतलाबाद पुलिस जांच शुरू करे छॾी। ॿुधायो पियो वञे त मुबिन जी गाॾी बलूचिस्तान वारे एरिया मां थाई आहे, जॾहिं त ॿिन्ही मुबिन जा गर्भाती सख़्त परेशान आहिनि। दड़ो भरिसां भाउ हथां भेण क़तल। ॻोठु मौलवी अहमद भरिसां जवाबदार ख़लील मंगसी फायरिंग करे भेण दुआ खे क़तल कयो। जवाबदार फरार, कारण मालूम न थियो। शहर कोर्ट में क्रिकेट रांदि खेॾण दौरान ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़ो लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबु 8 ॼणा ज़ख़्मी। लगारी भटी चांडिया ऐं बिरोई बिरादरी जे माण्हुनि में जहिड़ो थियो। लगारी बिरादरी जे माण्हुनि केस न थियण ख़िलाफ़ मस्तोई मोहला में रोड ते धरणो आयो। केस दाख़िल करे जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। फेसगंज ऐं भरपासे में मंशियात जे आज़ार ख़िलाफ़ शहरनि जो पकाचांग में एहतजाज। इलाइक़े में मंशियात जा मौजूदु अॾा बंदि करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मंशियात पुलिस जी सरपरस्ते में हली रही आहे। शहरनि सां गॾु ॻोठनि में बि मंशियात जा अॾा क़ाइम कया विया आहिनि। मंशियात विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। थरपारकर जे सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भक्त जो गादी नशीन भक्त माथूराम देहांत करे वियो। सोभ में मिठी शहर बंदि। माथूराम जूं आख़िरी रस्मूं अॼु अदा कयूं वेंदियूं। पिंगरो में इंटर जी शागिर्दाणी अरूसा खोसो खे तंग कंदड़ उबास छोकरनि ते केस दाख़िल। अरूसा खोसो जे वालिद हुसैन बख़्श खोसो जी फरियाद ते पिंगरो पुलिस जुनैद खोसो ऐं सरफराज खोसो ते केस दाख़िल कयो। पुलिस जवाबदारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो। हिंगोर जा भरिसां क़ौमी शाहरा ते ऑयल टैंकर जो कार खे टकर, 2 ॼणा फोत। हादसे में जावेद अली शाह समेत 2 ॼणा फोत थिया। लाश इस्पताल मुंतकिल। बिरया रोड में कराची खां लाहौर वेंदड़ तेज़गाम एक्सप्रेस जी टकर में नौजवान फोत। फोती नौजवान जी सुञाणप बिरया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक जे नाले सां कई वई।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
3: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।

0: सरजिले नाम मण चयो आहे त खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वज़ीर अरणी तरमीम ऐं सूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम जा फैसला न कंदा, पहिरीं ही अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फैसला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा।
1: सूबे बड़े खुदमुख्तार हो गए, जिस 18वीं तरमीम की खुदमुख्तारी की आप बात करें वो आपके ही लीडर साहब जो है वो 18वीं तरमीम के अब खिलाफ भी बोल रहे हैं। जो आपके वफाकी वजीर साहब हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका कल ही बयान था जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम के खिलाफ बात। सर अफसोस की बात यह है कि उन तमाम चीजों पर, यह बहुत सीरियस मसला है, जो जो 18वीं तरमीम के फवायद सूबों को मिले, 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से आपके, इससे पहले आप देखें कि हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन थी, यही आपकी जिना हॉस्पिटल थी ना जो कि ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। अब जिना हॉस्पिटल में आप जाके देखें, आपकी एनआईसीबीडी है कि पाकिस्तान की बेहतरीन और दुनिया के चंद ममालिक में एनआईसीबीडी एक ऐसी है जिसमें लोग रोजाना हजारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त में इलाज कराते हैं, वो 18वीं तरमीम की वजह से हुआ। आपके, मैं थरपारकर की बात करूं, थरपारकर आज 3,500 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, इतने वसाइल थे कि वो, और वो बिजली पूरे पाकिस्तान के लिए काम आ रही है, वो बिजली किसी एक शहर के लिए एक सूबे के लिए काम नहीं आ रही, और जा आ रही है नेशनल ग्रिड में ही जा रही है।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आहिन खैराती मैंडेट फॉर्म 47 ते आयल कौम जा फैसला न कंदा। पहिरीं ही अवाम वट वञन मैंडेट वठन पोए गाल्हियूं कन। कौम जा फैसला फॉर्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि, न त खेनि जवाब बि मिली वेंदो। बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक़ सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोडशेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

0: सदर आसिफ जरदारी यूरोप जो दौरो मुख्तसर करे छो सु डेह वापसी का इम्कान जरिए चवण है सदर आसिफ जरदारी बिन डीन फ्रांस वनो हो हाँ सदर फ्रांस जो दौरो मुलतवी कर सु लंडन का डेह वापस अचान जो फैसलो है। असाजे असासन के निशानो बनाया वो तो खिते में मौजूद अमरीकी असासा भी महफूज न रहंदा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ अमरीका के खबरदार कंदे है तो तेहरान पंजी जवाबी सलाहियत साबित कर चुको है। ईरानी असासन ते हमलन जो जवाब अमरीकी तेल ए गैस कंपनियों ते हमला कर दिनों वो। अमेरिका से इतिहाद अहम है पर अरब मुल्क के पंजी हिफाजत लाए पान भरो थेड़ो पौंदो। कतरी परदेही वजार के तर्जमान मजीद अल अंसारी चेवा है तो रुगो अरब मुल्क के अमेरिका ते भारण बदरा स्ट्रेटिक मामलन में पान भरो थेड़ो पौंदो। सिक्योरिटी मामलन में वधण सा ही दिफा यकीनी बनाए सकजे थी। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात गडियल सरकार से इतफाक। मुराद अली शाह तो सियासी इस्तेहकाम जमहूरी अमल जो तसलसल मुल्क की तरक्की लाए जरूरी है। फैसल करीम कुंडी तो सिंध ए खैबर पख्तूनख्वा समेत समूरा सूबा पाकिस्तान की तरक्की में बराबर जहा शरीक है। पीटीआई अवाम की मर्जी बिना सूबन के विरहांगे की मुखालफत कर छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अवाम की मर्जी बिना सिंध जो विरहांगो थो तो वफाक कमजोर थो। सूबन की क्याम बाबत तकरारी कानून साजी न थियन घुर्जे ये संजीदा मामलो है बहस थियन घुर्जे। सलमान अक्रम राजा टेहत्तर की आइन खिलाफ वही सूबन की विरहांगे की हिमायत न कंदी। आइन वाजे है तो सूबे की विरहांगे लाए लागापियल सूबे की असेंबली ही मंजूरी दी। मुल्क में आइन की बालादस्त।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लाखी ने लतीफ फरमायो त चेतारे चवंदियास गालियूं के सजणे जे मोह मुकाबिल थ्यास ता वयूं सब विसरी। जीअ में जायूं ॾींदे चवंदासीं भलीकार, जेकॾहिं अवां रेडियो सेट या इंटरनेट ते एंजॉय कयो पिया पंहिंजे शो खे, अवां किथे किथे ॿुधो पिया उहो असांखे अहसासु तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां असांखे मैसेज मोकिलींदो। तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे, तव्हां पहिरीं पहिरीं लिखो MTI, उन खां पोइ स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो, छो त अव्हांजा मैसेज जीअं ई पहुचंदा जीअ में जायूं ॾेई शामिल कंदासीं। सो मौजे सामाइन, अवां रेडियो सेट ते था ॿुधो या इंटरनेट ते, अवां कार में ॿुधो पिया या बाज़ार में, अवां घरनि में ॿुधो पिया वाहिणनि में, वस्तियुनि में, बस्तियुनि में या पंहिंजे मस्तियुनि में, सो साईं जिते हुजो हुजो हशाश बशाश। ऐं हा, अवां जी मुर्क मेरी न थिए इहा त अवां जे लाइ हमेशा दुआ बि हूंदी। दोस्तो, अवां ॼाणो था त हिन दुनिया में इंसान खे सभ खां वधीक जेका ख़ुशी हूंदी आहे पंहिंजा तोड़े परावा उहे ॾींदा आहिनि जेके सजण थी बीहंदा आहिनि। ऐं दुनिया में सभ खां तकलीफ़ वारो अमल इहो आहे त इंसान जेकॾहिं को कंहिं लाइ सड़े थो, को कंहिं सां हसद करे थो, हासिद जेको आहे सभ खां वॾी तकलीफ़ में हूंदो आहे, छाकाणि जो हसद पंहिंजे ख़ुशियुनि खे त ख़तमु कंदो आहे पर हासिद जेको हूंदो परायनि ख़ुशियुनि ते हुई बि जलंदो रहंदो आहे, हुनखे सुकून न आहे हूंदो। अल्लाह ताला जे तरफ़ा ॾिनल इंसान खे केॾी बि ख़ुशी हुजे पर हासिद खे ख़ुशी नसीब न आहे थींदी, छो त हू ॿिए ते हसद करे थो। हुन खे भले 10 ख़ुशियूं मिलियल हुजनि पर उन खां कंहिं माण्हूअ जी हिकड़ी ख़ुशी बर्दाश्त न आहे थींदी। इन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त हासिद सॼो ॾींहुं हसद में सड़ंदो पचंदो रहंदो। उन करे हसद न करियो, मोहबत करियो ऐं दुआ ॾियो। जेकॾहिं कंहिंखे ख़ुशि था ॾिसो त उन जे लाइ दुआ कयो, अञा बि बाग बहार हुजे उन जे सदिके अलाह पाक अव्हां खे बि ख़ुशि रखंदो। ॻाल्हियूं असां खोड कबियूं ऐं टेलीफोनिक ॻाल्हियूं तव्हां सां थींदियूं, उहे त थींदियूं 2 कलाक में। पहिरीं कलाक में अॼु असीं चाहियूं था त तव्हां असांखे कुझु मैसेज मोकिलियो, त पोइ ॾिसूं था केरु हूंदो असांखे ॿुधे थो। उन जे लाइ असां मैसेज पेज ते हलंदासीं। तव्हां टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 881 यानी 88 81 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल, त पोइ अवांजा मैसेज शामिल करण जे लाइ यकीननि प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे रंगनि में हलूं था, ॾिसूं था त असांखे मैसेज कंहिं कंहिं मोकिलिया आहिनि। जी जनाब,

बुढ़े इस्माइल खान का असा के बुधे पे अलण खान अल्लाह बचायो। अच्छा जी अल्लाह बचायो असा के बुधे तो नोतकानी साहब अल्लाह बचाया केड़ा हाल है खुश आयो ठीक आयो चंगा भला गोठ शहीद मोहम्मद फाजिल राहू का जुमन खासकेली साहब उदे पे जुमन भा मेहरबानी भलीकार तमा लिखियो है डियर ब्रदर यूनुस सलाम वालेकुम सलाम थैंक यू भलीकार वेलकम मई वडा वड़ मिठा मानो ओके जनाब साज़े आवाज़ी साथ में अवाम शामिल थियण जे लाइ हाणे ई मैसेज करे छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल थियण जे लाइ मैसेज ते सो तव्हां बिना देर जे मोकिलियो मैसेज अॼु असीं ॾिसंदासीं असां सां गॾु केरु थो शामिल थिए। ओके जनाब त पए झलूरी खां ख़ालिक लाशारी ज्वाइन कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं मिठा माण्हू अव्हां खे भलीकार चवंदासीं। जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी ॿुधे पियो आकिब ॿुधे पियो अव्हां सां गॾु अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं अव्हां खे बि चवंदासीं भलीकार थैंक यू ऐं अज़हर लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधे थो मोहबतूं वॾा वॾ ऐं पाबो वीर थर खां असांखे दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो नोवल राय ऐं अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं दानिश कुमार तव्हां सां गॾिजी ॿुधे थो सूरज गुल थैंक यू भलीकार शंकर लाल बसंग ॿुधे थो अव्हां शो चयो आहे सुठो आहे मां थोरायतो आहियां तव्हांजो तव्हांखे शो सुठो लॻे थो बसि ॿियो छा घुर्जे। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली यादि कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआऊं मोहबतूं प्यार ऐं पंहिंजा रंग मोकिलिया मैसेज में तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं प्यार तव्हांजो क़बूल पियो मिठा माण्हू थैंक यू। ऐं सरफराज़ जरवार असांखे यादि कयो आहे तमामु घणियूं महिरबानियूं खिपरो खां तमामु घणियूं महिरबानियूं जी असांखे सुमार भील ॿुधे पियो दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे थो अवां लिखियो शाल सलामत जो आमीन सुम आमीन ऐं अवीं बि जो बाग बहार शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो शाल अवां जी मुर्क मेरी न थी। साईं मुंहिंजे जुगनि खां जीअरी महिराण माथिरीअ जे बलूक मिटीअ ते जिते जिते बि तव्हां रहो पिया तव्हांजी ख़ुशीअ जा ख़्वाहिशमंद आहियूं असां ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमामु टीम तव्हांजे लाइ दुआगू आहे। अवां यकीननि जिते जिते हूंदो ख़ुशि हूंदो त असां बि ख़ुशि हूंदासीं अव्हां जी ख़ुशी में ई असांजी ख़ुशी आहे। साईं मुंहिंजे को वक़्तु कहिड़ो को वक़्तु कहिड़ो पर जंहिं वक़्त में पंहिंजा वक़्त ते न पहुचनि ऐं पंहिंजा परावा महसूस थियनि ऐं सजण सार न लहनि त पोइ तकलीफ़ थींदी आहे ऐं अहिड़ी उदासी अहिड़ी तकलीफ़ जलाल चांडीअ जे हिन ट्रैक में मौजूदु आहे जंहिंमें जंहिंजे लाइ इंतज़ार हुजे जंहिंजे लाइ बेक़रार हुजे माण्हू ऐं उहो देरि करे अचे त पोइ हीअ मयार उन्हनि जे लाइ हूंदी।

जी जनाब, साथ में आवाज़ साथ में उनखे अगे जो असो कमर्शियल ब्रेक वठूं का गॉल कयूं असि चाहूं ता ताजे ला जबरदस्त स्ट्राइक प्ले करे पो कमर्शियल ब्रेक न हलूं ता तेस ते मैसेज मोकले सको था। सनूबर मैसेज मोकले है ता लिखल छवन मीराली जो ट्रैक है असेंगे बुधरायो उन जे बोल जे ता लिखी मोकले न वो समझ में कोन पे अचन। प्लीज एक दफा बेहर रिपीट मैसेज कजो आई जेके जेके भेनरू भाईर असेंगे बुधन था प्लीज जे ता का सॉन्ग प्ले करण जी रिक्वेस्ट मोकले था ता उहा रिक्वेस्ट मोकले इन तरीके सा जो सॉन्ग जा पहरिया बोल उन में लिख जी अचन। बहरहाल वठूं ता ट्रैक आईने शॉर्ट ब्रेक का पे वापस अची नो कमर्शियल ब्रेक हों बिना ब्रेक यूनिट बकारी वापस इंदो अब 1.5 कलाक वन साथ।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो नथियन और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻराइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

खसे खिल रुअण जो ही राहू न रोकियो, लड़ियल लुड़क सुड़काई आहू न रोकियो, भले द्वार दिलजा न पूरियल पटियो, पर विन्यायल उम्मीदुन जो वाहू न रोकियो। वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क मां बुधो पिया अवां जो पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अजो के अवां जे नाम अजो के शो में यकीन अज असां अवां जा मैसेज शामिल कयूं पिया। तकड़ो तकड़ो लिखी वठो, MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज हाणे ई मोकिलियो। लियाकत गाहो साहब असांखे ॿुधे थो, भलीकार लियाकत गाहो साहब।

नादिर गाहो अवां जो तमाम घणी महिरबानी भलीकार चवंदासीं अवां खे आल के मेरे अंकल आपका शो बहुत अच्छा थैंक यू भटी भाईटा भाईटा भाईटा बछड़ा आई कंध कोट का असा ज्वाइन कयो है मेहर अली बलोच साहब मेहर अली बलोच साहब तमाम घणी मोहब्बतूं वेलकम भलीकार कंधकोट जे हवाउनि मां मोहब्बतूं मोकिलण लाइ महिरबानी

जी मज़े समीन साथ हैं, आवाज़ साथ में यूनुस बकारी साथ हैं, डाटो सोनो साथ है। असन जे इनन 15 मिनटन जे मैसेज नारे साथ का पहुंदो असन साथ केडो कॉल्स वारो हुंदो साथ साईं मुजा दिसंदासी त कॉल्स में असावा के शामिल कंदासी, पर फिलहाल त कॉल न कजो। इय न थिए जो तवा हाणे ही कॉल करण शुरू कयो आ, हाणे कॉल बिल्कुल कोन हुंदी। हलो कॉल जो टाइम जो हुंदो वो न्यूज़ का पोए हुंदो। इन जे करे तेसि असां मैसेजेस शामिल कयूं पिया, असां कोशिश कयूं पिया त तव्हां असां जी बि ॻाल्हि ॿुधो ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि असांखे ॿुधाए वठो। छो त जेका लिखत वारी ॻाल्हि हूंदी उन जे ॿुधाइण जो अंदाज़ पंहिंजो ख़ूबसूरत अंदाज़ हूंदो आहे। सो ॾिसी था वठो त असांखे केरु थो यादि करे। इरफान अली थेबो साहब असांखे ॿुधी रहियो आहे साले पुट खां, उनजो तमामु घणी महिरबानी। साले पुट खां अवां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो था, मोहबतूं मिठा माण्हू, ख़ुशि जो आबाद हुजो। ऐं नोटो खां असांखे ॿुधे पियो जी नंढड़ी रवीना ॿुधे पई, ऐं कमलेश ॿुधे पियो, ऐं रजीना कुमारी ॿुधे पई। अवां जो तमामु घणी महिरबानी। ऐं रामचंद कुमार बि ॿुधे पियो, भलीकार चवंदासीं सभिनी खे। थैंक यू। मटियारी खां सनोबर जो मैसेज पहुतो, अवां जूं महिरबानी, भलीकार। अवां लिखियो त शमन जो ट्रैक ज़रूर ॿुधाइजो, बिल्कुलु असांजी क्यू शीट में शामिल आहे शमन, अवां ॿुधजो त तव्हांखे उहो गानो कीअं थो लॻे। साथ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां, अवां असांखे लाइव ॿुधो पिया जेके महिरबानी। रेडियो सेट इंटरनेट ऐं फेसबुक ते ॿुधनि पिया, सभिनी जूं मोहबतुनि। जेकॾहिं अवां असांखे ज्वाइन करे चुका आहियो, ऐं हा जेके महिरबानी परडे में असांजे लाइव शोज़ खे ॿुधण चाहिनि था, उन लाइ असांजी लाइव स्ट्रीमिंग आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे तव्हां गूगल ते सर्च कंदव, असांजी सॼी एप्लीकेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदी। जेके बि 8 स्टेशननि मां तव्हांखे जेका स्टेशन वणे थी उनखे तव्हां लाइव सघो था, ऐं जेके असांजा शो जेके नेटवर्क जा हूंदा उहे त तव्हां जंहिं स्टेशन खे क्लिक कंदो तव्हां सां गॾु हूंदासीं सची पची। त पोइ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे गूगल ते बि सर्च करियो, दुनिया जे कुंड कुर्छ में अवां सां गॾु जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क, जेको सिंध जो आवाज़ आहे, सिंध जूं सदाऊं खणी अवां ताईं पहुचनि। ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची, लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची। ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची, लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची। दिल भरे करियां मां दीदार तुंहिंजो, प्यास नेणनि जी लहे जे तूं अची। सो जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं, सुठा गाना, सुठा ट्रैक ॿुधण सां माण्हुनि खे सुकून मिलंदो आहे। ही ट्रैक गॾिजी ॿुधूं था, अव्हां खे कीअं थो लॻे ॿुधाइजो मैसेज में, जल्दी जल्दी मैसेज कजो। छो त हिन खां पोइ जेको कलाकु शुरू थींदो न्यूज़ खां पोइ, उहो हूंदो कॉल्स वारो। ऐं हा, कॉल्स जे लाइ असीं तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा, उन ते कॉल कजो, जेको नंबर न ॿुधायूं उन ते न। त पोइ ट्रैक आहे, ब्रेक आहे, बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसि ईंदो, छो त प्रोग्राम आहे जारी। ओ सारी हिकिड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी।

टीम लॻे अव्हांखे अॼु शो ज़रूर पंहिंजी राय खां आगाह कजो ऐं मैसेजिस अवांजी मोहबत अवांजो प्यार अवांजी पंहिंजाइप आहे शामिल अॼु शो में त पोइ ही आवाज़ ॿुधो हिन आवाज़ में हिन ट्रैक में अव्हांखे छा पियो महसूस थिए दर्द हज़ार ॾिनई मूंखे त बीमार कयई फौज़िया सुमरो जो ही आवाज़ जेको दर्द ॾे ऐं वरी पुछे हाल अहिवाल त हाणे कहिड़ो हाल अथई त पोइ छा थींदो केॾा न यादगार ऐं शानदार गीत फौज़िया सुमरो ॻाया हुया ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त फौज़िया सुमरो सेप्टेम्बर महीने जी 4 तारीख़ ते हिन खां असां खां तकरीबन 20-22 साल अॻे जॾहिं विछड़ी वई हुई पर हुन जा गीत सदाई सिंध में गूंजंदा रहंदा सो फौज़िया सुमरो जी ट्रैक ॿुधी वठो यूनिस बकारी बिना ब्रेक वापसि ईंदो ऐं असां ॻाल्हियूं कंदो रहंदो छो त थोरो टाइम बचो आहे न्यूज़ में

थींदी पर अवां खे नंबर ॿुधाईंदासीं। ब्रेक खां पोइ केॾे ॾांहुं वञिजो छो त प्रोग्राम आहे जारी उसारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी शो आहे सिंधड़ीअ जी शाम।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेयर जो उहिदो रखण जी तजवीज़ आहे, इस्लामाबाद जे नए ढांचे जी मंजूरी वफ़ाक़ी काबिना ॾींदी।

0: फरियाल टालपुर जेको सिंध असेंबली में ॻाल्हायो, ईअं सम्झो त उहो सदर आसिफ अली ज़रदारी ॻाल्हायो। सिंध जी विरासत हुजे या नवां किनाल हुजनि, का बि सौदेबाज़ी न थींदी पी पी ए में न। मीर मुनोर टालपुर चयो आहे त सिंध असांजी माउ आहे, पार्टी जेको हुकुम कंदी अमल कयो वेंदो। सिंध विरहाणे जी साज़िश कंदड़ मुल्क जा ख़ैर ख़्वाह न आहिनि। मुल्क में जमहूरियत आहे, मायूसी जी का बि ॻाल्हि न आहे। सिंध टुटण न ॾींदासीं।
1: हामिद मीर साहब की जो हम माजी की जितनी भी कंट्रीब्यूशन रही है वो उस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक आज भी वही है, उस पर मैं इनकारी नहीं हूँ। उस बात का वो दानिश्ता या ना दानिश्ता तौर पे उनसे सरजद हुई, इखलाकी तौर पे उनको मौजत करनी चाहिए थी कि इससे दिलादारी हुई है लोगों की, तो मैं इस पे मौजत करता हूँ। ये अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू है, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर है, सब मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं उनको फकत सिंध के बच्चे आउट ऑफ स्कूल नजर आते हैं, बाकी पाकिस्तान के नजर नहीं आते। उनको ये नजर नहीं आता कि पंजाब में भाई 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है, 50 लाख के करीब बच्चे जो है वो केपी में बाहर है। मैंने नहीं कहा था, सिंध के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। अब अगर सिंध की वहदत का जो अगर हमने इशू उठाया है असेंबली के फ्लोर पे या बाहर, अगर कोई उसको लिंक करके मलाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके अलावा सिंध के लोग देंगे, हमें बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना सिंध के लोग कैसे जवाब देते।
0: कारकर्दगी जे नाले ते सिंध जी वहदत ते चथर कंदव त पोइ ॾिसजो सिंध जा माण्हू तव्हांखे कहिड़ो था जवाबु ॾियनि। सिंध जी वहदत जे मामले ते असांखे वेहण जी ज़रूरत ई न पवंदी, सिंध वासी पाण ई तव्हांखे जवाबु ॾींदा। सरदार शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरदार शाह चयो त हामिद मीर खां ॼाणी वाणी या अणॼाणाई में जेका ग़लती थी वई आहे उन ते खेसि माज़रत करणु घुरिजे। सभिनी खे स्कूलनि मां ॿाहिरि रख, रुगो सिंध जा ॿार नज़र ईंदा आहिनि। पंजाब में 1 करोड़ ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 5 लख ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, पर उहे कंहिंखे नज़र नथा अचनि, रुगो सिंध नज़र अचे ई पई।
2: अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी हादसे की सूरत में, हैदराबाद में, सक्कर में, मीरपुर खास में कोई बच्चा गिर जाए, उसका जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब है, मुर्तजा वहाब है, सिंध गवर्नमेंट थी, फिर ये रवश आगे चली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया। अगर वही बच्चा खुदा न खास्ता किसी और सूबे में गिर रहा था तो वो एक हादसा था, मेनोल का कसूर था, बच्चों के वालदेन का कसूर था, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर था, सूबे की हद तक भी नहीं जाते। अगर खुदा न खास्ता किसी सूबे के अंदर पुलिस की ज्यादती हो जाए और कोई बेगुनाह शहरी उसके अजल का शिकार हो जाए, सिंध के अंदर वो सिंधी वडेरे का कसूर है, सिंध का कसूर है, फिर पीपल्स पार्टी का कसूर है, सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, मुर्तजा वहाब का कसूर है, लेकिन कोई बेगुनाह ऑस्ट्रेलिया से शहीद हो जाए, बेगुनाह बच्ची चकवाल के अंदर मारी जाए, वो पुलिस की नाहली है या एक बंदे का कसूर है। अगर बारिश क्लाउड बस्ट हो जाए सिंध के अंदर तो सारी सिंध गवर्नमेंट फिक्स हो जाती है, अदरवाइज रावलपिंडी में, लाहौर में वो क्लाउड बस्ट कहलाता है। बड़ी अफसोस की बात है, अब रवश यहां तक चली गई है कि अब उसको सिंध की वैधानिक के साथ भी जोड़ा जाए।
0: सूबे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त असांजी कारकर्दगी खां पोइ हाणे सिंध जे शहीदनि ऐं वहदत ते बि तनक़ीद करणु शुरू करे छॾी आहे। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जी रिथ पेश करण सां MQM PTI जमायत इस्लामी वारा वाइखा थी विया। फंक्शनल लीग वारनि जो सिंध जी वहदत ते को चिटो मौक़िफ़ साम्हूं न आयो आहे। सिंध में को ॿार गटर में किरे त मेयर, सॼी सरकार ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत खे ज़िमेवार क़रार ॾिनो वञे थो। कंहिं ॿिए सूबे में ॿार गटर में किरंदो त हुन जी ज़िमेवार रुॻो इंतिज़ामिया हूंदी, ॻाल्हि सूबे ताईं न पहुचंदी।

बदकिस्मती सां फारम 47 जी पैदावार वफ़ाक़ी वज़ीर अर्णी तरमीम ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ते आयल माण्हू क़ौम जो फ़ैसिलो नथा करे सघनि। शर्जील मेमण जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शर्जील मेमण चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजो निज़ाम सही न पई करे सघे ऐं पोइ सिंध खे निशानो बणायो वञे थो। पाणी, गैस, बिजली ऐं मोटरवेज में सिंध सां ज़्यादत थी रही आहे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत में वेठल अमलदारनि ऐं वज़ीरनि खे अलाए छो सिंध जा माण्हू नज़र नथा अचनि। बिजली, गैस ऐं पाणी जे मसइलनि ते वफ़ाक़ी ख़त लिखिया आहिनि पर पोइ बि तदारक न कयो वियो। खैरपुर, सखर ऐं घोटकी में चार चार ॾींहं बिजली बंदि। भली 15 ॾींहं बिजली न हुजे पर बिल साॻियो अचे थो। स्पीकर अवेस कादर शाह जी शर्जील मेमण खे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाला उथारण जी हिदायत।

सूबा न ठहंदा तव्हांजी नौकिरी वेंदी। पीपीएमपीएस जो मोहसिन नकवी खे जवाबु, सईद गनी चयो त सिंध जे अवाम फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे त सिंध में कंहिं बि नए सूबे या इंतिज़ामी यूनिट जी ज़रूरत न आहे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकाणी जो चवणो हो त मोहसिन नकवी खे कंहिं अख़्तियार ॾिनो आहे त सिंध खे विरिहाइण जो फ़ैसिलो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त लाहौर में नव माण्हू वेही सिंध खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। मोहसिन नकवी ॿुधी छॾे त सिंध खे विरिहाइण न ॾींदासीं। मारवी राशिदी चयो त अवाम खे हथियार खणण लाइ भड़काईंदड़ ख़ालिद मकबूल ऐं मुस्तफ़ा कमाल ते केस दाख़िल करणु घुरिजनि। इमदाद किताफ़ी जो चवणो हो त जी डी ए वारा किथे आहिनि, 10 ॾींहनि दौरान किथे कंहिंखे को नज़र आयो हुजे त ॿुधायो। सोशल मीडिया ते पोस्टूं रखण सां कुझु न थींदो, मुखालफ़त करणी आहे त पीपल्स पार्टी जीअं खुली करे कयो।

सिंध जो विरांगो ऐं इस्लामाबाद सूबो लंडन प्लान जो हिसो आहे। पीपल्स पार्टी बि वफ़ाक सां हिकु पेज ते आहे। मोहसिन नक़वी सिंध असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि नवनि सूबनि जी ॻाल्हि करे सिंध जी तज़लील कई। वकील अॻवाण जाफ़र शाह जूं टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हियूं। जाफ़र शाह चयो त हैरत जी ॻाल्हि आहे त पीपल्स पार्टी अञा ताईं मोहसिन नक़वी जी इस्तीफ़ा जो मुतालबो न कयो आहे। सिंध खे विरिहाइण जी कोशिशि कई वई त सिंध जे माण्हुनि जो सख़्तु रद अमल साम्हूं ईंदो। सिंध खे विरिहाइण वारो मोहसिन नक़वी केरु थींदो आहे? पीपल्स पार्टी तरीक़े इंसाफ़ चयो आहे वकीलनि ऐं आमशहरनि सिंध जे विरहाङे जी मुखालफ़त कई आहे। मोहसिन नक़वी चयो हो त किनाल ठाहींदा, पोइ छा थियो? आवाम जी ताक़त ॾाढो केरु बि बीह न सघंदो। जयू आई अॻवण राशिद महमूद सुमरो जी पिथोरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राशिद महमूद सुमरो चयो त असां मौजूदा असेंबलियुनि खे नथा मञूं, फौरी तौर मुल्क में नयूं चूंडूं कराई वञनि। जयू आई सियासी बुनियादनि ते पीटीआई बानी जी गिरफ़्तारी जी मज़मत करे थी। घरू मामलनि बाबति सेनेट कमेटी जे इजलास दौरान चेयरमैन सैफला एबड़ो ऐं ममलकती वज़ीर दलाल चौधरी में मुंहुं मारी। सेनेटर सरमद अली जो क्रिमिनल ला तरमीमी बिल 2026 रोकण ते दलाल चौधरी चयो त रुगो औरतुनि जा बिल मंज़ूर पिया थियनि, सरमद अली जो बिल रोकणु ज़्यादती आहे। दलाल चौधरी बुशरा अंजुम भट जी एंटी रैप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल जी मुखालफ़त कई, जंहिं ते गौर थियो। बाद में बिल ते वोटिंग खां पोइ कमेटी यकरा सां मंज़ूर करे वरितो। एंटी रैप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल सेनेटर शादत तेवाण ऐं सेनेटर अब्दुल क़ादिर जा क्रिमिनल लाइ तरमीमी बिल बि कमेटी मंज़ूर करे वरिता। लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई अॻवाण ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर अहमद अज़हर खे 20 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। अहमद अज़हर खे गुज़िरियल ॾींहुं मुल्तान मां गिरफ़्तार कयो वियो हो, पर लाहौर पुलिस संदसि बाक़ाइदी गिरफ़्तारी अॼु ज़ाहिर कई। पुलिस तर्जुमान मूजिबि अहमद अज़हर लाहौर पुलिस खे 18 केसनि में घुरबल हो। हू 10 सालनि ताईं रूपोश हो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच फेमीदा पिताफी केस में पेश न थियण ते आईजी सिंध जा वारंट जारी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पुलिस ॾहरकी जी नारी फेमीदा पिताफी खे बाज़ियाब न कराए सघी। डीआईजी सखर ऐं SSP घोटकी अदालत ॾांहुं पेश थिया। फेमीदा पिताफी खे बाज़ियाब न कराइण ते अदालत पारां डीआईजी सखर ऐं SSP घोटकी ते कावड़ जी ज़ार। अदालत पुलिस तर्फ़ां वधीक मोहलत वारी इस्तदाब रद्द करे छॾी। केस जी ॿुधणी हिकु हफ़्ते लाइ मुलतवी।

एसपीएससी में मेरठ जी लताड़ा ऐं सिफारिशुनि ते नौकरियूं ॾियण खिलाफ़ जामचोर में यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जो मार्च, स्टूडेंट सेक्शन कमेटी जे सॾ ते सिंध यूनिवर्सिटी खां डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ताईं मार्च करे नारेबाज़ी कई वई। शागिर्दनि जो चवणो त एसपीएससी एल शागिर्दनि लाइ रोज़गार जो वाहिद ज़रियो हो, उनखे बि हथ वठी तबाह कयो वियो। 2024 जा इम्तिहान रद्द करे ॿीहर वरिता वञनि, उमिरि जी हद 35 साल करे मेरिट ते नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। कराची जे इलाइक़े लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में फैक्ट्री खे लॻल बाहि शिदत अख़्तियार करे वई। सॼे शहर मां फायर फाइटर्स तलब, धूं बढ़जण सबबि ऑपरेशन में ॾुखियाई। फैक्ट्री अंदरि गोदाम जी इमारत ड्रही पट पइजी वई, बाहि भर वारी फैक्ट्री खे लपेट में आणे छॾियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह नोटिस वरितो, फैक्ट्री अंदरि मौजूदु माण्हुनि जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ खे हर सूरत में यकीनी बणाइण ऐं रेस्क्यू ऑपरेशन वधीक तेज़ करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर कमिश्नर कराची ऐं लाॻापियल इंतिज़ामिया खां सूरत हाल बाबति रिपोर्ट बि घुरी वरिती।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध असेंबली में 1943 ईस्वी में पाकिस्तान जक में करारदाद पास कई वही। उन वक्त अंग्रेज हुक्मरान इलाके के नुमाइंदन का पुछो वे तो शामिल थियण चाहन था या न। सिंध असेंबली यानी अवाम पाकिस्तान में शामिल है दाखिल थियण जो फैसलो किया। वे वजीर जो योम दिफा की तकरीब के खिताब मुराद अली शाह सिंध पाकिस्तान ठाईद बानी सूबन में शामिल है। पाकिस्तान पां चैन सूबन सा गड हमेशा कायम ए दायम रहो। वे वजीर जे मुल्क में सगारी बलदियाती निज़ाम की गाल कन था बुधी छन त मकानी इदार निज़ाम रुगो सिंध में है बेहतर नमूने कम कर रो है।
2: वो एक पोजीशन ले रहे हैं, उनका हक है पोजीशन लेना, लेकिन जो अल्टीमेटली इवॉल्व होगी सिचुएशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, किसी पार्टी के सियासी मुफादात का तहफ़ नहीं होगा, वो सेकेंडरी चीज़ है, सानवी चीज़ है। मुफादात जो है पाकिस्तान की आवाम को जो है एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम देना चाहिए जिससे उनको ग्रास रूट लेवल पे सबसे जो निचला लेवल है हमारी सियासी स्ट्रक्चर का उसके उनको सर्विसेज अवेलेबल।
1: पीपल्स पार्टी वा पोजिशन वी रहन संदन हक है, पर जैसे को फैसलो थो तो कें पार्टी के सियासी मुफादन जो तहफ़ नो। आवाम के हेठी सतह से अख्तियार मिलन घुर्जन, सूबा या इंतजाम यूनिट रखण कौमी मसलो है, उनमें किथे भी मुखालफत न थियण घुर्जे। ख्वाजा आसिफ जो साफिन से गालू, ख्वाजा आसिफ चो तो इस्लामाबाद पांजी हुकूमत ठाण सुठो कदम है। इस्लामाबाद के मुस्तकबिल जो नव इंतजामी नक्शो वजीर आजम के पेश किया वो। जरिन मूजिब तजवीज़ कल ड्राफ्ट आला सतह जो खास कमेटी वजीर आजम के पेश किया। इस्लामाबाद के 27 मेंबर्स से बदल असेंबली कायम करने की सिफारिश। जरिन मूजिब इस्लामाबाद की पांजी असेंबली चीफ एग्जीक्यूटिव 27 इंतजामी खाता तजवीज़ किया वह। इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव लाए वे वजीर या मेयर जो अहदो रखने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद की नए ढांचे की मंजूरी वफाकी काबीना डी। फरियाद टालपुर जो सिंध असेंबली में गलायो ये समझो तो वो सदर आसिफ अली जरदारी गलायो। सिंध की विरासत हो जे या नवा किनाल होजन का भी सौदेबाजी न थी। पीपीएम ने मीर मुनर टालपुर चाहे तो असांजी सिंध माओ है, पार्टी जो हुकुम कदी अमल कर वो। सिंध विरहाने की साजिश कदड़ मुल्क जहा खैर खान, मुल्क में जमहूरियत है, मायूसी की का भी गाल ना, सिंध टुटण न डींदी।
3: हामिद मीर साहब की जो हम माजी की जितनी भी कंट्रीब्यूशन रही है वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक आज भी वही है, उस पर मैं इंकारी नहीं हूँ उस बात का। वो दानिश्ता या ना दानिश्ता तौर पे उनसे सरजद हुई, अखलाकी तौर पे उनको मौजत करनी चाहिए थी कि इससे दिलादारी हुई है लोगों की, तो मैं इस पे मौजत कर रहा हूँ। ये अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू है, इतने बच्चे स्कूलों से बाहर है, सब मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं उनको फकत सिंध के बच्चे आउट ऑफ स्कूल नजर आते हैं, बाकी पाकिस्तान के नजर नहीं आते। उनको ये नजर नहीं आता कि पंजाब में भाई 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है, 50 लाख के करीब बच्चे जो है वो केपी में बाहर है। मैंने नहीं कहा था, सिंध के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। अब अगर सिंध की वहदत का जो अगर हमने इशू उठाया है असेंबली के फ्लोर पे या बाहर, अगर कोई उसको लिंक करके मलाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके अलावा सिंध के लोग देंगे, हमें बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना सिंध के लोग कैसे जवाब देते।
1: कारकर्दगी के नाले से सिंध की वहदत से चथर कद तो ऐसो सिंध जहा मू तेड़ो था जवाब दियन। सिंध की वहदत के मामले से असा के बेहण की जरूरत ही न पवी, सिंधवासी पा ही तवा के जवाब दींदा। सरदार शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार शाह चो तो हामिद मीर का जानी वाणी या अणजाणाई में जी गलती थी वही है उनते खेस माजरत कर घुर्जे। सभी के स्कूल में बाहर रुगो सिंध जहा बार नजर अचन था। पंजाब में 1 करोड़ बार स्कूल का बार हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 50 लख बार स्कूल का बार हैं, पर उते के नजर न था अचन, रुगो सिंध नजर पी अचे।
4: अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी हादसे की सूरत में, हैदराबाद में, सक्कर में, मीरपुर खास में कोई बच्चा गिर जाए उसका जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब है, मुर्तजा वहाब है, सिंध गवर्नमेंट थी, फिर ये रविश आगे चली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कहा गया अगर वही बच्चा खुदा ना खास्ता किसी और सूबे में गिर रहा था तो वो एक हादसा था, मेनोल का कसूर था, बच्चों के वालदेन का कसूर था, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर था, सूबे के हद तक भी नहीं जाते। अगर खुदा ना खास्ता किसी सूबे के अंदर पुलिस की ज्यादती हो जाए और कोई बेगुनाह शहरी उसके अजल का शिकार हो जाए, सिंध के अंदर वो सिंधी वडेरे का कसूर है, सिंध का कसूर है, फिर पीपल्स पार्टी का कसूर है, सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, मुर्तजा वहाब का कसूर है, लेकिन कोई बेगुनाह ऑस्ट्रेलिया से शहीद हो जाए, बेगुनाह बच्ची चकवाल के अंदर मारी जाए, वो पुलिस की नाहली है या एक बंदे का कसूर है। अगर बारिश क्लाउड बस्ट हो जाए सिंध के अंदर तो सारी सिंध गवर्नमेंट फिक्स हो जाती है, अदरवाइज रावलपिंडी में लाहौर में वो क्लाउड बस्ट कहलाता है। बड़ी अफसोस की बात है, अब रवश यहाँ तक चली गई है कि अब उसको सिंध की वैधानियत के साथ जोड़ा जाए।
1: सूबाई वजीर जाम खान शोरे है त असांजी कारकर्दगी खां पोइ हाणे सिंध जे शहीदनि ऐं वदत ते बि तनक़ीद करणु शुरू थी वई आहे। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जी रिथ पेश करण सां MQM PTI जमायत इस्लामी वारा वाइखा थी विया। फंक्शनल लीग वारनि जो बि सिंध जी वदत ते को चिटो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे। सिंध में को ॿार गटर निकिरे थो त मेयर सॼी सरकार ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत खे ज़िमेवार क़रार ॾिनो वञे थो। कंहिं ॿिए सूबे में ॿार गटर निकिरंदो त उनजी ज़िमेवार रुॻो इंतिज़ामिया हूंदी, ॻाल्हि सूबे ताईं न पहुचंदी।

0: सिंध जो विरांगो ऐं इस्लामाबाद सूबो लंडन प्लान जो हिसो आहे। पीपल्स पार्टी बे वफ़ाक़ सां हिकु
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरिल दिलन में आबे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी

कराची का कश्मीर किंजर का कानून जरताई श्रेणी सिंध वासन के आबिद चौहान जो सिख भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल्ली गाल से गद आऊं आया आबिद चौहान ए आवा बुधी रहया हो जीएफएम नेटवर्क।

GFM नेटवर्क ऐं दिलि जी ॻाल्हि जो ॿुधंदड़ तमामु सभिनी प्रिय प्यारनि दिलि रुबा दिलि भर दोस्तनि खे प्रोग्राम में वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

रागी थोपो जबल जागे धुन ब्याहे कोहारी राग भी पहाड़ी आ हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई जो चपनते चुप्पा है छो कनंते ताड़ी आ।

जा मुरकंदड़ सभी रमता। मक्तलन जी राहन जा मुरकंदड़ सभी रमता, सिंध तोसा निस्बत में कंधते कुहाड़िया। आऊं पहंजे लहजे में अजनबी किथे आया, आऊं पहंजे लहजे में अजनबी किथे आया, इश्क मुझो उतरा दी दर्द मुझो लाड़िया। रूह बे अजा रंजीदा दिल बे डाढ़ी बाड़िया, हाय मन जी मोमल जी अज उदास माड़िया। इंतहाई दर्द भरियो प्यार भरियो खूबसूरत गजल रुबीना अबड़ो जो शामिल कियो से प्रोग्राम में।

उनसां अलावा अवां असां खे लाइव कॉलिंग वसीले कॉल बि करे सघो था। थोरी देरि में अव्हांखे कॉलिंग वठबूं। असांजो लाइव कॉल नंबर आहे 03-000-11-34-88।

अच्छो तो यादुन के वरी ताजो क्यों रात जे है ना थदड़े पहर में खूबसूरत ट्रैक अख्तर दरगाह जी शायरी शख्स हिकड़ो याद आयो शाम जो

वक्त थियो आहे हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो. कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं ऐं तव्हांजो लाइव कॉलिंग अटेंड कंदासीं. ॿुधंदा रहो जी एफ एम 88 नेटवर्क.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अमां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
5: या पंहिंजी पुराणी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते
4: जिते तव्हां खे मिलन थियूं टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
5: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
4: तव्हांजी पसंदि, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
5: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जी गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूद आहे मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां।
4: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
5: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अॼु ई राबितो करियो 03002963322।
6: यार मां छा कयां, किथे वञां, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही ना आहियां, शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
7: छो भला, छा थियो आहे तोखे, साफ साफ ॿुधा मसलो छा आहे।
6: यार हिक मसलो हुजे त ॿुधायां, मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे, न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
7: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिक ई मसलो आहे।
6: हिक इहो कीअं?
7: हा तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे, छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
6: त पोइ मां छा कयां?
7: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
6: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
7: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
8: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मैं
9: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेट।

0: पहुचायूं था असांखे इन्हीं प्रोग्राम ते अवां जे लाड़काणे मां जा स्पॉन्सर मिलंदो त असां तव्हां जे लाड़काणे में इहो लिंक ओपन कराईंदासीं। बिल्कुल ॿुधाईंदासीं, बिल्कुल ॿुधाईंदासीं। को सलाम को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहियो प्रोग्राम में?
1: मुंहिंजा दोस्त ॿुधंदा
0: जी,
1: वापसी बुकी चा तूं मुस्लिम बुकी अली तूं अली चंदा वफ़ा अब्दुल भाई जतई
0: ख़ूबसूरत बल्कि अवां जी फरमाइश वारो डेडिकेट कंदासीं। लाज़मी लाज़मी असां पंहिंजी प्लेलिस्ट में शामिल था पिया कयूं त हलबो हाणे लॾे लॾे बेक़दरनि खे छॾे छॾे काॾे वञी रहिया हूं कहिड़े पार लाड़काणे वारा तमामु प्यारा माण्हू आहिनि। बसि असांखे असां चई छॾियोसीं न असां हाणे लाड़काणे जो कोशिशि कंदासीं, ॿ कलाक हलायूं प्रोग्राम। ठीकु आहे पहिरां ॿुधंदा रहो
1: बाबर शेख बि
0: बाबर इहो रिकॉर्डेड प्रोग्राम ॿुधंदो, रिकॉर्डेड प्रोग्राम ॿुधंदो अवां जी फरमाइशूं जेके आहिनि त इनशाला ज़रूरु पूरी थींदी। जुड़िया पिया हुजो अवां जी मोहबतनि जा लख थोराए था इनशाला कनेक्ट थींदो लाड़काणे में थींदो इनशाला। वरी महिरबानी, लव यू, लक लाइक, थैंक यू।

वक्त थियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो. कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अवां जो वरी कॉलिंग अटेंड करण जो सिलसिलो जारी रहंदो. ॿुधंदा रहो जी एफ एम एट नेटवर्क.

0: बदलाव जारी आहिनि। चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ास सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद। 5 सालनि जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 7:30 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
3: 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुयसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग: छंछर खां ख़मीस सुबुह 10 खां शाम 5 ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440।
4: सचल की सरमस्त धरती,
5: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
4: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

बाहन में तू, नगमा धरतीअ जा बाहन में तू, आज़ादी जी जज़्बात बि हूंदी। चंड निकाह पढ़ाईंदो पंहिंजो, चंड निकाह पढ़ाईंदो पंहिंजो, तारनि जी गॾु बारात बि हूंदी, रस्मनि जी कारी रात बि हूंदी ऐं पंहिंजे विच में

पूछू तो गजी रहमान मुगल जे आवाज़ में खूबसूरत गीत इंजॉय क्यों हलबो हाणे लॾे लॾे बेकदरनि जे शहर खे छॾे छॾे।

माज़रत खाहियूं, कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300 011 3488, नंबर रिपीट थो कयां 0300 011 3488, हिन ते अव्हां असांखे वॉइस मैसेज पैगाम बि उमाड़े सघो था ऐं असांखे एस एम एस करण लाइ 8881 ते एस एम एस बि करे सघो था। छा चवां मां तोखे, छा चवां मां तोखे, गुल चवां त विखरी वेंदे, दिल चवां त टुटी वेंदे। छा चवां मां तोखे, गुल चवां त विखरी वेंदे, दिल चवां त टुटी वेंदे, सिज चवां त लही वेंदे, चंड चवां त ककरनि में लिखी वेंदे। मौसम चवां त बदलजी वेंदे, मुसाफिर चवां त विछड़ी वेंदे। मौसम चवां त बदलजी वेंदे, मुसाफिर चवां त विछड़ी वेंदे। हली आओ उस्ताद बुखारी, तुंहिंजो नाम ज़िंदगी रखां, बची पवंदुसि जे मिली।

0: परेशान हो आवाम,
1: महंगाई हो बेलगाम,
0: जुल्म ज्यादती हो या तामीर हो तरक्की,
1: सक्कर की हो या सक्कर के गिर्दो पेश की, सियासी,
0: समाजी,
1: सकाफती,
0: तालीम
1: या खेलों की हर खबर आपको मिलेगी।
0: आपसे जुड़ी हर खबर
1: GAFM 88 नेटवर्क पर।
0: GAFM 88 नेटवर्क।